दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: यो BFBS गोरखा रेडियो हो।
1: ए लाहोरे दाई
2: के हो कांची
1: लाहोरे को फैशन कसुरे
2: आ तस्ता जावा
1: बाबे कस्तु गम क्यों को हो
2: लो भनु तो
1: लो
2: लो मादले दाई गम कौनु होस्ता

छी है कस्तो रह छ बिना के न हो गम के को केस्तो सुंदा फुरंग भई लहरे ढल के को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हिरसल के को केना भूल चल रे दाई लूट

0: कहानी सुनाओगी?
1: जरूर सुनाऊंगी। इधर आओ, बोलो कौन सी कहानी सुनोगे?
0: तोते और बंदर की।
1: अच्छा, जरूर सुनाऊंगी।

तत्तिगतितिगता लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंगता खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं